आदमी सुपरफिशियलिटी के चक्कर में कितने धक्के खाता है, आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू। वैसे आपको बताने की जरूरत क्या है, आप तो आधी से ज्यादा जिंदगी सुपरफिशियल ही रहे हो। आपको तो पता है कि इसकी क्या ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस होती हैं। बट जस्ट टू मेक मैटर्स क्लियर, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार एक बंदे को डेट किया जस्ट बिकॉज ही वॉज सो डैम गुड लुकिंग, ड्रॉप डेड गॉर्जियस था भाई वो बंदा। मैंने उसे देखते ही सपने भी देख लिए कि उसके और मेरे बच्चे कितने ही क्यूट होंगे। मेरा नाक, उसका स्किन टोन, उसके बाल, मेरी स्माइल, ये सब वो सब। देन उसके बाद जब मैंने मिस्टर सुपरफिशियली हॉट को डेट करना शुरू किया, देन आई रियलाइज कि बाहर से जो इतना सुंदर है, अंदर से इन वन वर्ड ही इज क्वाइट लीचड़। एंड अब लीचड़ के साथ मैं फंस गई। तो मैंने कुछ महीने तो शांति से निकाल दिए, वैसे काफ़ी शांति भी नहीं थी, मैंने बहुत झगड़े किए। बट द एंड ऑफ द स्टोरी वॉज आई रियलाइज कि अगर बंदे में, उसके दिल में आपको प्यार करने की कैपेसिटी नहीं है, अगर उसके दिल में अपने अलावा और किसी के लिए प्यार करने की कैपेसिटी नहीं है, देन द बेस्ट थिंग टू डू विद दैट पर्सन इज टू डंप देम। और वो था मेरा सुपरफिशियलिटी का पहला और आखिरी मॉरल साइंस लेसन कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर बेटा, इट कुड मोस्टली बी मिसलीडिंग। अगर मेरी तरह आपने भी किसी बहुत ही गुड लुकिंग इंसान को डेट किया ओनली टू फाइंड कि उनके दिल में तो कैविटी की तरह छेद है, Why don't you hit me up? We will compare notes. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead, Janu, do what you need to do. लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: वैसे तो आप एक इंटर्न थे और आपको अपनी कॉलीग से मोहब्बत थी, कॉलीग की शादी होने वाली थी, आप उसकी शादी पर भी गए और शादी पर जाकर आपने अपनी कॉलीग को बोला कि आप उससे शादी करना चाहते हो। ये जो आप कांड करते हो, रहते फिलाते हो, इसका करना क्या जिंदगी में यार?
2: द सीक्रेट बॉक्स।
1: और अगर करना कराना कुछ नहीं है, यू जस्ट वॉन्ट टू मेक अ कन्फेशन एंड लीव इट एट दैट, वाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम मिर्ची रोशी है, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है एक ऐसे बंदे हु सेज कि मुझे मिस्ट्री कॉलर से अपना नाम इंट्रोड्यूस कराना ही नहीं है। आई वॉन्ट टू बी नोन एज हर्षवर्धन। हेलो हर्षु।
3: हाय रोशी,
1: कैसे हो आप?
3: मैं बहुत अच्छा, आप बताओ?
1: अच्छे तो हो आप। और जो कन्फेशन आपने मुझे भेजा है ना, वो पढ़कर लाइक मेरे तोते उड़ गए थे। तो एग्जैक्टली आपकी जिंदगी में हो क्या रहा था?
3: तो बेसिकली हुआ ऐसा, हाँ, कि मैं रिलेशनशिप में था एक लड़की के साथ, और अभी 2-3 साल हो गए थे हमको। तो एक दिन मुझे पता चलता है कि लाइक वो मेरे को चीट कर रही है, वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ।
1: ओके,
3: रिलेशनशिप था। और जब मुझे इस चीज का पता चला तो ऑब्वियसली मतलब हर्ट हुआ मैं, और मैंने उसको जब कन्फ्रंट किया तो कहने लगी कि नहीं नहीं मतलब इससे गलती होगी, आई एम सॉरी। और फिर से मतलब लाइक दोबारा पैचअप करने की बात हुई। बट यार ऑब्वियसली एक बार चीट कर चुकी है, तो यू नो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, टैटू करवाते हैं। तू मेरे नाम का टैटू करवा, मैं तेरे नाम का करवाता हूँ, लाइक ताकि मेरे को थोड़ा भरोसा हो।
1: करेक्ट, एग्जैक्टली। मतलब मेरे हाथ पे किसी का नाम लिखा हो ऐसे टैटूड, तो ऑब्वियसली अगर मैं किसी और बंदे के साथ चिल करी हूँ, लास्ट में ये कौन सा बंदा? करेक्ट।
3: हाँ, इसीलिए मैंने उसको बोला ठीक है। तो पहले तो थोड़ा उसका अनजानी सी थी उसने, बट उसने कहा चलो ठीक है मैं करती हूँ। तो हमने टैटू करवाया, तो उसका मेरा नाम प्रॉपर मतलब लाइक हर्षवर्धन, लाइक मैं कुमार यूज करता हूँ। तो कह रही यार अब इतना ही बड़ा नहीं कि कुमार तो आएगा भी नहीं, मैंने कोई नहीं तो हर्षवर्धन ही कर दे। उसने हर्षवर्धन किया, तो मुझे कहा कि चल अब लाइक तू अब टैटू करवा। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे टैटू करवाना ही नहीं है, और मुझे तो सर रिलेशनशिप में रहना भी नहीं है।
1: That is so savage, so savage.
3: मतलब यू नो मैं ये था मेरे को यार, कहना तो नहीं चाहिए हो सकता गलत भी साउंड कर रहा हूँ, बदला वर्ड, बट मेरे को ये लग रहा था कि नहीं भाई अब तू ना इसी नाम के साथ जी, अब तू मतलब मेरे को नहीं रहना था रिलेशनशिप में।
1: You are so savage.
3: और आपने वाला गाना सुना है?
1: कौन सा?
3: ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम, मैंने वाला मोमेंट हो गया फिर।
1: यू सीरियसली आई थिंक बिटवीन यू एंड योर गर्लफ्रेंड शायद उसे रोशे वेकेशन की जरूरत है, बट क्या आपने अपना दिमाग लगाया ना, जस्ट फॉर दैट हियर्स अ रोशे वेकेशन।
0: यू've बीन रोशिफाइड।
1: आपकी बेचारी गर्लफ्रेंड अपने छोटे से आम पर इतना लंबा हर्षवर्धन की सारी जिंदगी निकल जाएगी, फिर भी उसे कवर नहीं कर पाएगी, बेशरम।
3: हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आपको कॉल करके फिर ये बात सुनाया हो।
1: I hope not. I do not want to hear both sides of the story. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरे मिस्ट्री कॉलर, एक्चुअली मिस्ट्री तो थे ही नहीं है, हर्षवर्धन की तरह कोई कन्फेशन है, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, I'll be so happy to talk to you. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So do whatever you have to do, baby. लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

मैं तो उड़ा उड़ा उड़ा उड़ा उड़ा वे कजरा मेरे अंदर हुंदी शूशा शूशा हर वेले हंसा गवा हुआ।

Michi. It's hot.

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर हफ्ते बॉलीवुड हमें कुछ बेचने की कोशिश करता है, कभी एक नया हीरो, कभी एक नई जोड़ी, कभी एक पुरानी याद और कभी कभी एक सपना। लेकिन इस हफ्ते मुझे एक चीज समझ आई, हिट्स बनाना मुश्किल है लेकिन बस क्रिएट करना काफी आसान, और इन दोनों के बीच का फर्क ही बॉलीवुड की असली कहानी है। क्योंकि इस हफ्ते मैंने देखा लोग फिल्मों से ज्यादा उनके ट्रेलर्स को डिस्कस कर रहे हैं, गाने रिलीज होने से पहले ही ट्रेंड कर रहे हैं और कुछ पुरानी कहानियां फिर से जिंदा होने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन शोर के इस समंदर में आखिर में सिर्फ एक चीज टिकती है, एंड दैट इज कनेक्शन। एक गाने का, एक कहानी का, या फिर एक इमोशन का। और आज हम वही ढूंढने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े बॉलीवुड काउंटडाउन में। हाय, इट्स मी सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20। एंड आज देखिए, पुरानी फ्रेंचाइजीज वापस आ रही हैं, पुराने गाने वापस आ रहे हैं और कुछ लोग अचानक हर जगह नजर आ रहे हैं। द दियोल ब्रदर्स, दिस सडनली एवरीवेयर। एंड मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑडियंस एक चीज जरूर अप्रिशिएट करती है, एंड दैट इज टैलेंट। लेकिन ऑडियंस एक और चीज कुछ ज्यादा ही अप्रिशिएट करती है, एंड दैट इज रेजिलियंस। शुरू करते हैं गाना नंबर 20 से। ये है बॉबी दियोल की आने वाली फिल्म बंदर का गाना क्यों मजा आ रहा है, सॉन्ग एंड कंपोज बाय विशाल मिश्रा। बाय द वे, बॉबी दियोल के बारे में आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग इनसेन, कहीं जाना मत। आई विल बी बैक।
0: नंबर 20।

0: मस्कारा और इम्तियाज अली की फिल्म्स का भी एक अजीब सा पैटर्न है। ऊपर से देखो तो लव स्टोरीज लगती हैं, लेकिन थोड़ा गौर करो तो प्यार उनकी फिल्म्स में डेस्टिनेशन कभी होता ही नहीं। प्यार तो बस एक जरिया है, प्यार तो बस एक रास्ता है खुद को ढूंढने का। इसलिए 11 फिल्म्स बाद भी इम्तियाज का सिनेमा अलग महसूस होता है, और इस हफ्ते उनके बारे में एक ऐसी कहानी पढ़ने को मिली जो मुझे एकदम फैसिनेटिंग लगी।
1: तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही।
0: दिस फिल्म मैन, जब वी मेट। और जब हम जब वी मेट की बात करते हैं तो आदित्य के रूप में सिर्फ शाहिद कपूर नजर आते हैं, एंड ऑनेस्टली उस रोल को शाहिद ने कंप्लीटली ओन कर लिया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब आदित्य के लिए इम्तियाज अली की पहली चॉइस शाहिद नहीं थे, इट वॉज बॉबी देओल। इनफैक्ट सोचा ना था कि बाद बॉबी ने ही इम्तियाज के टैलेंट पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया। स्क्रिप्ट को स्टूडियोज तक ले गए, फिल्म को पुश किया, लेकिन फिर हुए डीलेस, बजट्स बदले, कैलकुलेशंस बदले, और बॉलीवुड ने एक अलग रास्ता चुन लिया। और यहाँ मुझे लगता है कि हम सिनेमा को थोड़ा गलत समझते हैं। हम फिल्मों के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे जो हुआ वही होना था, जैसे सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ था। लेकिन ऐसा होता नहीं। फिल्में तकदीर नहीं होती, फिल्में इत्तेफाक होती हैं, खूबसूरत इत्तेफाक। एक एक्टर बदल जाए, एक डेट शिफ्ट हो जाए, एक प्रोड्यूसर मना कर दे, और पूरी कहानी बदल सकती है। क्या बॉबी देओल आदित्य को अच्छा प्ले करते? शायद। क्या फिल्म और बड़ी होती? शायद। क्या फिल्म उतनी खास ही नहीं बनती? शायद। हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात जरूर पता है, कभी कभी कास्टिंग डिसीजन सिर्फ एक फिल्म नहीं बदलते, वो पूरे पॉप कल्चर का फ्यूचर बदल देते हैं। और अब एक गाना जो इस हफ्ते चार्ट्स पर सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं बल्कि अपनी सोनिक साउंड की ब्यूटी की वजह से है। फ्रॉम कृष्ण अवतारम, दिस इज प्रेम की लीला, द वॉइसेस, श्रेया घोषाल, जावेद अली एंड सुवर्णा तिवारी।
2: नंबर 18।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 11 अच्छा

चुनरी चुनरी और ऑनेस्टली गाने रीमेक हो सकते हैं लेकिन फीलिंग रीमेक नहीं हो सकती, इसलिए कुछ गाने आते हैं शोर मचाते हैं और चले जाते हैं, एंड देन कुछ गाने होते हैं जो पता भी नहीं चलता कब आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं, कब सुबह ड्राइव में आ जाते हैं, कब हेडफोन्स में रिपीट पे लग जाते हैं, कब आप उन्हें स्किप करना ही भूल जाते हैं। हर साल एक समर एंथम जरूर आता है लेकिन कभी कभी एक गाना समर एंथम से ज्यादा बन जाता है, वो पूरे सीजन का ही मूड बन जाता है, और मेरे लिए इस साल वो गाना है तुझको फ्रॉम कॉकटेल 2। क्यों I'm sure आप पूछेंगे, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि सिर्फ नॉस्टैल्जिया एक फैक्टर है। नॉस्टैल्जिया तो हर दूसरा गाना बेच रहा है भाई, ये कुछ और ही है। ये गाना भागता नहीं, ये चिल्लाता नहीं, ये अटेंशन भी नहीं मांगता, बस आपके पास आकर बैठ जाता है, जैसे शाम की ठंडी हवा, जैसे वो लंबी ड्राइव, जैसे कोई पुराना दोस्त जिसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। शायद इसलिए कनेक्ट करता है ये गाना। और हाँ, शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना को देखकर भी कुछ अलग ही महसूस होता है, दोनों एक्टिंग नहीं कर रहे, ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं, एंड वो ऑनेस्टी स्क्रीन से बाहर निकलकर गाने में घुल जाती है। And how Shahid can still look so convincing as a college boy, it totally baffles me. But he nails it. मुझे नहीं पता ये गाना कितने हफ्ते चार्ट्स पे रहेगा, कितने रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। बस इतना पता है, मैं इसे skip नहीं कर पा रहा। And maybe that's the biggest compliment a song can get. Maybe the song will go to number one. लेकिन इस हफ्ते on its debut, it's on number 10. Arijit Singh, even in his retirement year, is giving us these beautiful diamonds. और उनको साथ मिल रहा है सुनिधि चौहान का दो अलग दुनिया एक साथ. This is Tujhko from Cocktail 2. Number 10.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 5.

नंबर पांच पे था गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर 27 वीक्स ऑन द काउंटडाउन, और नंबर चार पे इस हफ्ते धुरंधर की ही सीक्वल का गाना है आरी आरी बाय द बॉम्बे रॉकर्स, विच टेल्स यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द होल्ड दिस फ्रेंचाइज स्टिल हैज ऑन द ऑडियंसेस। लेकिन धुरंधर को देखकर मुझे एक और बात याद आती है, some collaborations right just work, uska koi reason nahi hota, you can't explain it, you can't manufacture it। Shahrukh Khan aur Karan Johar ko dekhiye, Akshay Kumar aur Priyadarshan ko dekhiye, aur meri list mein ek aur jodi hai, Sanjay Dutt aur Sanjay Gupta। Mujhe honestly unke fallout ke bare mein kuch nahi pata, I have zero interest in it। Mera interest sirf is baat se hai ki ye dono phir कब साथ काम करेंगे, क्योंकि संजय गुप्ता ने संजय दत्त को सिर्फ कास्ट नहीं किया, उन्हें एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बना दिया। हर एंट्री लगी लार्ज देन लाइफ, संजू बाबा की वॉक, उनकी चाल पेल डेंजरस, हर फ्रेम एक पोस्टर लगा। वो लेदर जैकेट्स, वो हैवी बूट्स, वो डार्क ग्लासेस, वो दाढ़ी, वो भारी आवाज, संजू बाबा हीरो कम अर्बन लेजेंड ज्यादा लगते थे। और फिर आई एक फिल्म दैट चेंज्ड एवरीथिंग, कांटे, फिल्म दैट प्रैक्टिकली अनाउंस्ड ये बॉलीवुड हीरोज हमेशा हीरोज नहीं होते। उस फिल्म की स्पिरिट था एक गाना, रामा रे। उस गाने ने हर रूल को तोड़ा, ना उसमें रोमांस था, ना स्विट्जरलैंड में डांस कर रहा था कोई, ना कोई प्रिटेंशन था कि ये सारे अच्छे लोग हैं, बस छह क्रिमिनल्स स्टेयरिंग डेस्टिनी देयर किस्मत इन द फेस, लालच, बगावत, भाईचारा, और बीच में संजय दत्त की आवाज, साउंडिंग लाइक अ मैन हु हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड व्हाटएवर केम नेक्स्ट। दैट्स व्हाई रामा रे वाजंट जस्ट अ सॉन्ग, इट वाज अ स्टेटमेंट, एंड व्हाट अ कंपोजिशन बाय आनंद राज आनंद, ब्रेकिंग ऑल द रूल्स। ये गाना है मेरे इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक फ्रॉम कांटे। जाने

0: the film also be wow. करते हैं इंतजार, लेकिन नंबर वन गाने तक पहुंचने से पहले let me just say, मैं बहुत disturbed हूं, because शायद हम देख रहे हैं, witness कर रहे हैं, the death of cool. ना मैं किसी एक्टर की बात करूंगा, ना किसी कंट्रोवर्सी को डिस्कस करूंगा, मैं एक फीलिंग की बात कर रहा हूं, एक जॉनर की, एक दुनिया की. देखो बॉलीवुड में हीरोज बहुत आए, शायद बहुत आएंगे, लेकिन विलन को सुपरस्टार बनाने का काम सिर्फ एक फिल्म ने किया, एंड दैट वाज डॉन. डॉन सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं है, डॉन इज कूल. वो सूट्स, वो स्वैगर, वो कॉन्फिडेंस, द फीलिंग के रूम में सबसे खतरनाक आदमी वही है, और उसे इस बात की कोई जल्दी भी नहीं है. आज भी सोचिए, हमारे पास हॉरर कॉमेडी है, we've got romance, we've got action, we've got patriotism, लेकिन stylish, international crime thriller, criminal mastermind, ऐसा anti-hero जिसके लिए आप secretly root करने लगते हो, there is none, zero, कोई भी नहीं है. और शायद इसलिए Dawn important है, क्योंकि जब Bollywood हर दूसरे हफ्ते एक sequel announce करता है, तब उसकी सबसे unique franchise uncertainty में खड़ी है, and that feels strange. हो सकता है Dawn 3 बनेगी, हो सकता है कि नहीं बनेगी, लेकिन अगर ये कहानी यहीं रुक गई तो बॉलीवुड सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं खोदेगा, बॉलीवुड अपना सबसे स्टाइलिश क्रिमिनल खोदेगा, और शायद थोड़ा सा कूल भी, which is why I said it's the death of cool. So now it is up to Farhan Akhtar. वही डिसाइड कर सकते हैं if India gets another Dawn, if the world gets another Dawn, या फिर maybe we have seen the last of him. फिलहाल 16 हफ्तों से नंबर वन एंड स्टिल रिफ्यूजिंग टू मूव. ये है शरारत फ्रॉम धुरंधर वन, शाश्वत सचदेव का बनाया हुआ ये एवरलास्टिंग बैंगर
1: नंबर वन.

0: और इस एपिसोड की एक ही बात मेरे साथ रहने वाली है। बॉलीवुड हर वक्त बदलता रहता है, नए चेहरे आते हैं, नई आवाजें आती हैं, कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं और कुछ गाने हमेशा के लिए साथ चल पड़ते हैं। बस इसी बदलती हुई ट्रिप का नाम है द मिर्ची टॉप 20। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। आर रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath on Mirchi.
3: Mirchi sun rahe hain aap. Ab baari hai to set the pop clock for the week. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं. इस बंदी का नाम है आरजे कनिका. इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने हैं. हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है. सम स्पेशल शाउट आउट्स एंड मोर. तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन के विद गाना नंबर 10. अदनान सामी की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स. गाने का नाम है लिपस्टिक. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है. दिस सुपर फन सॉन्ग बाय अदनान इज ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद दिलजीत दोसांझ द डीलर, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके डीलर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. ये दोनों गाने बैक टू बैक, अदनान सामी का लिपस्टिक देन दिलजीत का डीलर, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 10.

0: दिस सॉन्ग स्क्रीम्स दैट पंजाबी आ गए हैं हुए दिलजीत दोसांझ की आवाज उन्हीं की कंपोजिशन गाने का नाम है डीलर 11 हफ्तों से पंजाबी इस काउंटडाउन पे रेजिडेंट बन चुके हैं पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके डीलर वाज दिस वीकेंड गाना नंबर 9
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों के काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं. इंस्टाग्राम पर जाओ मुझे फॉलो करो बिल्कुल फ्री है मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना शेयर करना है कोई बातें बतानी हो बिंदास आके हिट मी अप. अक्सर आप लोग मुझसे गाने शेयर करने से ज्यादा आजकल गानों का नाम पूछते हो कि यार वो मैंने बाद में ट्यून किया था और ये वाला गाना कौन सा था. डोंट वरी शो के बीच में हम आपके लिए पूरा काउंटडाउन वापस रीकैप करेंगे. अभी काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है दैट्स बाय मीका सिंह. नाम ऐसा है सुन के आपको उनकी आवाज याद आ जाती है. आवाज ऐसी है कि एक वर्ड सुन के ही हमको पता चल जाता है कि कौन सा आर्टिस्ट है. ही इज इनक्रेडिबली यूनिक दैट वे. चाहे उनके फिल्मों के गाने हो नॉन फिल्म गाने हो मीका सिंह इज अ कैरेक्टर इन हिज ओन राइट. सोचने वाली बात है ऑल आर्टिस्ट वॉन्ट दैट आइडेंटिफिकेशन राइट. कितनी बार होता है दैट हम कोई गाना चलाते हैं हम सोचते रह जाते हैं कि इसने गाया है उसने गाया है किसका गाना है. बट विद मीका सिंह देयर इज नेवर अ स्कोप ऑफ एनी कंफ्यूजन. उनकी आवाज ही उनके गानों की टेक अवे फैक्टर है. पिछले हफ्ते मैंने आपको इस काउंटडाउन पे एक ऐसा गाना सुनाया था आपको इंट्रो म्यूजिक सुन के बताना था ये कौन सा गाना है. कभी कभार वो इंट्रो म्यूजिक भी गाने का टेक अवे फैक्टर होता है. रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए एक बार फिर से सुनाती हूँ और बताओ ये कौन सा गाना है.

0: @RJ करेगा और इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ ये कौन सा गाना है, मीका का गाना है, जल्दी आके बताओ म्यूजिक किसका है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला गाना इज द अदर रैपर मीका सिंह का गाना, गाने का नाम है छोरी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जम करके छोरी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Gana Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi. Number 7.

0: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10 only show on Mirchi, which is all about the hottest pop music of the week. Is bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jaiye, mujhe follow karo. Follow karna bilkul free hai. Mera handle is @RJKanika. I truly believe that aap gaane share karte hai na, jisse bhi, jis dost se wahan pyar padta hai. और हर हफ्ते आप सब इतने सारे गाने शेयर करते हो हमारे साथ। अशकाय और मैं आपके सारे सजेशंस को ध्यान से देखते हैं for our segment which is called हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। ऑनेस्टली वी लव द क्लासिक इंडी पॉप एंड आपके सजेशंस, जिस तरह से, जिस एंथुजियाज्म से आप गाने शेयर करते हो, कहानियां बताते हो, इट जस्ट मेक्स अस फील सो हैप्पी। ऐसा लगता है कि मैं पूरे शो में दो बार ये करूं, पर इट्स नॉट पॉसिबल। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज कलोनियल कजन्स का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना कॉल्ड कृष्णा, एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज, वाइब बिल्कुल अलग है, बट इट इज फ्रॉम योर सजेशंस।

मीका का गाना कॉल्ड समथिंग समथिंग. इफ यू आर फ्रॉम द 2000s का जेनरेशन, यू नो द इम्पैक्ट ऑफ दिस सॉन्ग. बिफोर मीका सिंह बिकेम वॉइस ऑफ हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का एंथम, जैसे कि मौजा ही मौजा, सुबह होने ना दे फ्रॉम देसी बॉयज, आंख मारे फ्रॉम सिम्बा, मतलब उनकी आवाज हम सुनते हैं और वो पार्टी वाली आवाज याद आती है, 440 वोल्ट फ्रॉम सुल्तान. मीका सिंह ओन्स ऑल दीज सॉन्ग्स. ये गाने इतनी बड़ी फिल्मों के गाने हैं, बट इन हिज ओन राइट उनके नॉन फिल्म गाने लाइक समथिंग समथिंग का भी एग्जैक्टली वही इम्पैक्ट पड़ा था उनके करियर पर, उनके ऑडियंसेस पर. ये गाना उनके इंडिपेंडेंट पॉप फेस का एक मेजर पार्ट रह चुका है और उनके एल्बम का टाइटल ट्रैक भी था. गाने में कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफी है ही नहीं. द सॉन्ग इंट्रोड्यूसेस मीका सिंह एज अ कैरेक्टर टू अस. एक चीकी फ्लर्टेशन है, थोड़ी पंजाबी पॉप वाली एनर्जी भी है, एंड द हुक ऑफ द सॉन्ग जो पहली बार सुनते आपके दिमाग में घर कर लेता है. आई मीन इट, आई चैलेंज यू, ये गाना सुनने के बाद आप इसको हम नहीं करेंगे. अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. द बिगेस्ट पार्टी वॉइस ऑफ आर जेनरेशन मीका की आवाज में, दिस इज समथिंग समथिंग, अ 2006 इंडी पॉप सॉन्ग प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. बंदी का नाम है आरजे करेका. एंजॉय.

0: गॉड मीका सिंह, योर वॉइस इज गॉट दैट मिस्चीवियस चार्म, मतलब ऐसा लगता है कुछ छुपा रहा है, कुछ मतलब नहीं नहीं है, मैं नहीं ट्रस्ट कर रही हूँ इस पे, दैट्स द वाइब ही गिव्स मीका सिंह की आवाज में. दिस वाज समथिंग समथिंग ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे करिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड अपने सजेशंस बिंदास दो. ये मत सोचो कि ये गाना थोड़ी ना ये लोग चलाएंगे. रोहन फ्रॉम बैंगलोर ने हमको समथिंग समथिंग रेकमेंड किया था एंड हिज स्टोरी बिहाइंड इट जस्ट मेड अस लाफ सो मच दैट वी हाईली रेजोनेट विद हिम. 90s 2000s का वो आइकॉनिक इंडी पॉप गाना विच यू स्टिल थिंक इज एन एब्सोल्यूट बैंगर, हमसे आगे शेयर करो एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की तरफ. हिमेश रेशमिया की आवाज में रजत नागपाल राणा सोते का गाना, गाने का नाम है शराब. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके शराब इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10. बंदी का नाम है कनका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। अक्सर जब हम बैठते हैं, म्यूजिक मूवीज के बारे में बात करते हैं, हर जनरेशन के कुछ ऐसे गार्ड्स होते हैं, मॉरल गार्ड बोलते हैं उनको, जो ये बातें शुरू कर देते हैं कि यार आज के म्यूजिक में वो बात नहीं है, आज की फिल्मों में वो बात नहीं है। 10 साल पहले भी लोग बोल रहे थे कि तब के गानों में बात नहीं थी। अर्ली 2000s में जब बॉम्बे वाइकिंग अपना पॉप फ्यूजन ला रहे थे, तब 2000s वाले लोग बोल रहे थे कि आज के म्यूजिक में वो बात नहीं है। तो एक बात तो क्लियर है, लोगों का काम है कंप्लेन करना, वो कंप्लेन करते रहेंगे। व्हाट वी कैन डू थ्रू दिस शो इज आपको हर तरह के इंडिपेंडेंट म्यूजिक से इंट्रोड्यूस कराना। मे बी रोमांस, सैपी, हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स आर नॉट फॉर यू, तो थोड़ा सिंथ पॉप, जैज पॉप आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मे बी अ फोक पॉप फ्यूजन इज समथिंग दैट यू लाइक। मैं ऐसे बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी यूज करूंगी तो आपको लगेगा पता नहीं क्या आ रहा है, लेकिन गाने का म्यूजिक जब कनेक्ट करता है ना, तो बस देयर इज नो रीजन व्हाई वी लाइक अ सॉन्ग। आज मैं आपको एक ऐसे गाने से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ जिसका बेस तो फोक म्यूजिक है, बट फोक म्यूजिक के ऊपर पैकेजिंग सुपर मॉडर्न प्रोडक्शन की है। इट्स कॉल्ड उड़ी उड़ी बाय निशन सरकार। We'll play the whole song for you, लेकिन गाने के कुछ सेकंड सुन के ही समझ में आ जाता है कि ये गाना बहुत फैमिलियर भी लगता है पर नया भी लगता है। एक तरफ राजस्थानी फोक की वो लाइन बिलोड़ी चुनरिया यूं ही उड़ी उड़ी जाए, दूसरी तरफ द बेस लाइन, द ग्रूव, जो यू नो इट्स सो कूल, इट्स सो रेलेवेंट, इट्स सो न्यू। What I absolutely love about this song and the producers of this song is कि उन्होंने फोक म्यूजिक को कि यार ये तो उस जमाने का म्यूजिक है, आज के लोगों को समझ नहीं आ रहा है, हम इसको म्यूजियम में छुपा कर रखते हैं, ऐसी कोई कोशिश नहीं करी है। उन्होंने उससे ही आज की लैंग्वेज में बात करके दिखाई। गाना बहुत एनर्जेटिक है लेकिन ओवर द टॉप नहीं है। इट्स एक्सट्रीमली डांसेबल, ग्रूवेबल, लेकिन डांस के लिए नहीं बना है। एंड कोरस में एक ऐसी क्वालिटी है दैट एक दो बार सुनो फिर पूरे दिन दिमाग में घूमता रहता है। एंड दैट्स वॉट मेक्स इंडिपेंडेंट इंडियन पॉप म्यूजिक सो एक्साइटिंग। हमारा एज ओल्ड राजस्थानी फोक एंड ऊबर कूल प्रोडक्शन के साथ अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। गाने का नाम है उड़ी उड़ी बाय निश एंड सरकार। आई एम श्योर यू विल लाइक दिस सॉन्ग। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: इस गाने को एक बार सुन के काम ही नहीं चलता है। गाने का नाम है उड़ी उड़ी बाय नीश एंड सरकार, याद रख लो। वापस सुनना है तो गाना ऐप पर जाके जल्दी सुनना। @RJ करेगा और इंस्टाग्राम पर आओ। ऐसा कोई गाना है विच यू थिंक दैट आई लाइक इट, आई एम श्योर औरों को भी अच्छा लगेगा, हमसे आके शेयर करो एंड वी विल फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं। दिलजीत दोसांझ एंड सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। उसके बाद करण औजला इक्की का गाना, गाने का नाम है बॉयफ्रेंड फ्रॉम पी पॉप कल्चर, पूरे 27 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बॉयफ्रेंड इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर

0: ये गाना हर उस आर्टिस्ट के अंदर की आवाज को कैप्चर करता है जिसको लगता है कि क्या ये सिर्फ मुझे महसूस हो रहा है, बट नहीं, एवरी आर्टिस्ट हु इज ऑन अ जर्नी टू क्रिएशन कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट करते हैं। अनूप जैन ने उस फीलिंग को बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया है इन दिस सॉन्ग जिसका नाम है अर्ज किया है। अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके अर्ज किया है इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: पर। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, बदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। अपना रिपोर्ट कार्ड किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा मजा आता है देखने में कि कौन सा गाना हुआ आउट, कौन सा गाना हुआ 2 पोजीशन नीचे। बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक, ए क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। अदनान सामी की आवाज में लिपस्टिक वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10।
2: लिपस्टिक लगा के नजर उतार ले।
0: उसके बाद दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन नंबर 9।
3: जिदे तू पीछे यातनगी ना चोपर जोगी डब दबी ना।
0: मीका सिंह दया द रैपर का चोरी ऑन गाना नंबर 8।
4: चोरी करती जंप चोर ने दे दिया बम्प।
0: आदित्य रिखारी रैवट और कुटलेखा का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 7। फिर गाना नंबर 6 पर वो मिट्टा रोर का शीशा।
5: तेरी आंखें पीछे लगे सुन तो ना छोरी का हर रंग।
0: मेश रेशमिया इज बैक विद अ सॉन्ग कॉल्ड शराब दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ सिया का रांझा वॉज ऑन गाना नंबर 4। करण औजला इक्की का बॉयफ्रेंड ऑन गाना नंबर 3।

0: अनूप जैन की आवाज में हमने सुना अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 2।
1: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में।
0: And the numero uno song of the week is yet again Baron by Banjare. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप मार लिया है बैरन ने। 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। This हरियाणवी song is changing how music works, how it's blurring the boundaries between language and genres. Baron is playing right next for you only on Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है कनिका। Enjoy.
2: Number 1.

0: इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ
0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: किंज करो तारीफ तेरे चेहरे दी किंज करो तारीफ तेरे चेहरे।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

पीपल, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स, जो कि अभी अभी शुरू हुआ है, एकदम गर्मा गर्म चाय की तरह, एकदम एरोमेटिक कॉफी की तरह और क्रिस्पी ब्रेकफास्ट की तरह. टेल मी समथिंग, व्हाई इज वेकिंग अप सो मच फुल ऑफ ड्रामा? अलार्म कहता है गेट अप, वेदर कहता है स्टे एट होम, और ब्रेन कहता है यार अगर प्रमोशन चाहिए लाइफ में, कुछ करना है तो अभी के अभी उठकर वर्कआउट करना पड़ेगा. बट जो भी सिचुएशन हो, यू ऑलवेज शो अप, राइट? एंड दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, व्हेदर यू आर ड्राइविंग टू वर्क, ओपनिंग योर लैपटॉप 74th टाइम, या फिर पैक कर रहे हो स्कूल के लंचेस, या प्रिटेंड कर रहे हो मीटिंग में बैठकर कि कैमरा के इश्यूज चल रहे हैं. जो कुछ भी कर रहे हो ना, मुझे अपने साथ चिपकाए रखो. मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में लेकर आई तुम्हारे लिए गॉसिप, गपशप, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. और अभी म्यूजिक का टाइम आ चुका है. गर्मा गर्म मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए प्ले करने वाली हूँ, एज हॉट एज योर ब्रेकफास्ट. तो एंजॉय करो आगे आने वाले गाने और मुझे फॉलो करो इंस्टा एंड एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

98.3 Mirchi. It's hot.

गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड लाइक ऑलवेज ये टाइम है हमारा टाइम ट्रैवलिंग जर्नी का। आज की तारीख है 12 जून, स्टार्टिंग 1898, द फिलीपींस सेड थैंक यू नेक्स्ट एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन। 1929 में द वर्ल्ड वेलकम्ड एन फ्रैंक, हुज वर्ड्स वुड लेटर टच मिलियंस ऑफ लाइव्स। जंप टू 1963, सिविल राइट्स लीडर मेडगर एवर्स was assassinated in Mississippi. 1964 mein Nelson Mandela was sentenced to life in prison. Lekin history had bigger plans for him. Imagine being told your story is over and then becoming one of the world's strongest symbols of freedom. 1967 mein, it's a big one, the US Supreme Court struck down laws banning interracial marriages. Translation, love ko officially kaha gaya, you have all the freedom in the world. 1987 mein President Reagan looked at the Berlin Wall and said, "Isko hatao yahan se." And in 2016, the Pulse nightclub tragedy in Orlando reminded the world how precious community and kindness really are. Also, today is World Day Against Child Labor. So maybe today we celebrate freedom, but also remember responsibility. That's the final stop of your time traveling journey. Mere yani ki Prisala ke saath sun rahe ho the Mirchi Mornings. Aane wale kuch Mirchidar bangers. और तुम तब तक मुझे फॉलो कर सकते हो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम अक्रॉस सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, एक्स एंड एवरीवेयर। एंड व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट करने के लिए 9033 मिर्ची इज द नंबर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स एंड अभी गर्मा गर्म चाय के साथ लेट मी टेल यू सम टी। रिपोर्ट्स के हिसाब से ऋतिक रोशन इज स्टेपिंग इनटू जेलर टू एंड जॉइनिंग नन अदर देन रजनीकांत सर हिमसेल्फ फॉर अ स्पेशल अपीयरेंस दो। एंड यस, पीपल वर अर्लियर बजिंग अबाउट शाहरुख खान बीइंग पार्ट ऑफ द फिल्म, लेकिन वो इस फिल्म में नहीं है। सुने में आया है कि उनको रिप्लेस किया है ऋतिक रोशन ने बिकॉज ऑफ प्रीवियस स्केड्यूलिंग एंड कमिटमेंट इश्यूज। लेकिन वेट, देयर इज अ प्लॉट ट्विस्ट विद एक्स्ट्रा मिर्ची। दिस रियूनियन इज एक्स्ट्रा क्यूट बिकॉज ऋतिक रोशन एंड रजनी सर एक्चुअली शेयर्ड स्क्रीन स्पेस 40 इयर्स अगो इन भगवान दादा बैक इन 1986, जब ऋतिक रोशन छोटे से डुग्गू स्टार थे, मतलब चाइल्ड एक्टर थे। एंड नाउ लुक एट सिनेमा, वन मिनट यू आर अ किड एंड बूम 40 इयर्स लेटर यू आर एंटरिंग विद बैकग्राउंड स्कोर एंड विंड मशीन की एनर्जी। ऑल्सो रिपोर्ट्स के हिसाब से शूटिंग ऋतिक के साथ होने वाली है 22nd एंड 23rd ऑफ जून को एंड द मेकर्स आर प्लानिंग अ फ्रेश लुक फॉर हिम। ट्रांसलेशन है कि इस मूवी में पॉपकॉर्न लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इसे भी मजा आने वाला है बिकॉज आई हैव लाइंड अप सम हॉट हॉट मिर्चीदार बैंगर्स फॉर यू ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग. जरा वो टाइम आ चुका है जहाँ पर हम मौसम का हाल चाल पता करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट्स आवर वेदर डूइंग राइट नाउ. इट्स सिटिंग एट 73 डिग्रीज फारेनहाइट. इट्स प्लेजेंट, काफी सनी है, गिविंग अ वेरी आई कैन डू दिस वाला फील. बट बी केयरफुल, टुडे क्लाइम्स ऑल द वे to 92 degrees Fahrenheit and it can feel like 93 degrees Fahrenheit. Translation, it's officially one of those days जहाँ पर तुम्हें iced coffee की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. वैसे morning says mostly sunny with a little cloudy cameo सुबह के 9:30 बजे तक. मतलब कि clouds कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ थोड़ा time spend करूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा expectation मत रखना. Rain की report क्या कहती है? पिछले 24 घंटों में we had 0 millimeters की बरसात, लेकिन अगले 24 hours में there will be 3 millimeters with tiny drizzle around 6 PM. So if you're doing post-work chai walks, umbrella lekar saath mein nikalna, not because you need it, but because the one day you don't carry it, usi din barsaat hoti hai. Also, there is a heat advisory in effect till 8 PM. यानी कि कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, वेयर योर सनब्लॉक SPF 50+++ वाला और साथ में मिर्ची लगाए रखो. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग सुन रहे हो. तुम मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल चिपक के यहीं बैठो क्योंकि मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए प्ले करने वाली हूँ मैं. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट. रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
1: Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: आँखों ही आँखों में कर बातें गुपचुप गुपचुप गुपचुप कोई खुश खुश खुश खुश ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए आँखों ही आँखों में कर बातें गुपचुप गुपचुप गुपचुप कोई खुश खुश खुश खुश खुश ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़

Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग. और अब टाइम है अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स जानने का. सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है डिस्कशंस विद ईरान हैड रीच्ड अ स्टेज

मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और ये सुनो, इंटरनेट की इन्वेस्टिगेशन ना अपना खुद का एक ड्रामेटिक म्यूजिक तो डिजर्व करती है। बिकॉज अभी पता क्या हुआ, शकीरा परफॉर्म्ड विद बोना बॉय एट फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी। एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट एंजॉयिंग द परफॉर्मेंस, द इंटरनेट डिड व्हाट द इंटरनेट डज बेस्ट, ओपन्ड द डिटेक्टिव एजेंसी। सम फैंस स्टार्टेड आस्किंग, वेट, इज दैट एक्चुअली शकीरा? Others were convinced there was a body double on stage. Meanwhile, loyal fans जो हैं वो आए full confidence के साथ कहने लगे, excuse me, there is only one person who dances like Shakira, and that is, spoiler alert, Shakira herself. Honestly, I respect the commitment because only on the internet can people watch a global performance and still go zoom in real life. Cross check करने के लिए कि actually performer वही है कि नहीं है. But also it's pretty relatable क्योंकि हम देसीज जो है ना, हमें बचपन से training मिलती है क्योंकि हम identify कर पाते हैं उन relatives को जिनको हमने सालों पहले कभी देखा होगा या कभी देखा ही नहीं, सिर्फ photos में देखा है, फिर भी वो असली होते हैं कि नहीं होते हमें नहीं मालूम। और इसी बात पर तुम्हें एक असली खबर बताते हो। तरिश्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज, गेट $5 एक्स्ट्रा पर ग्राम ऑन एक्सचेंज्ड गोल्ड अपॉन डायमंड परचेजेस। साथ साथ में तुम्हें 0% डिडक्शन भी मिल रहा है अगर तुम अपना पुराना गोल्ड एक्सचेंज कराने के लिए लेकर आते हो, बस वो 9 कैरेट्स या उससे ऊपर होना चाहिए। ऑफकोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है, तो पहुंचो तनिष्क पर अपनी वीकेंड शॉपिंग के लिए, स्पेशली गोल्ड एंड डायमंड की शॉपिंग के लिए। और अभी फिलहाल मिर्ची दार बैंगर्स के लिए तुम यही बने रहो क्योंकि मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ में हूँ। कमिंग अप सम मिर्ची दार बैंगर्स फॉर यू। फॉलो मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसला। सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो बर्थडे बेबीज तैयार हो जाओ। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी दुआ यही है कि तुम्हारी कॉफी रहे हॉट, तुम्हारी मीटिंग्स रहे शॉर्ट, और तुम्हारे रिलेटिव जो है वो तुमसे बात ही ना करे आज के दिन इफ यू डोंट लाइक देम। गेस वॉट, यू आर शेयरिंग अ हैप्पी वाला बर्थडे विद सम रियली कूल पीपल। सबसे पहले वी गॉट एड्रियाना लीमा, शी इज अ ग्लोबल सुपरस्टार। एंड देन वी हैव डेव फ्रैंको, ऑल्सो रिक हॉफमैन का आज हैप्पी वाला बर्थडे है। साथ साथ में वी गॉट जेसन मेविस एंड मेरेडिथ ब्रूक्स, एंड देर आर सम बिग हिस्टोरिकल नेम्स, जॉर्ज H.W. बुश एंड फ्रैंक एंड डांसर एंड एक्ट्रेस पद्मिनी। सो बेसिकली अगर आज के दिन तुम इस धरती पर प्रकट हुए थे ना, तुम्हारा बर्थडे ग्रुप इज फिल्ड विद मॉडल्स, एक्टर्स, म्यूजिशियन, लीडर्स एंड लेजेंड्स। एंड रिमेम्बर, एज इज लाइक अ सॉफ्टवेयर अपडेट। कुछ लोग इसे इंस्टॉल कर लेते हैं बड़ी ग्रेसफुली, और आज तुम भी वही करने वाले हो। अपने बर्थडे केक और इनवाइट्स मुझे भेज सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची। दैट्स 9033647244। राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ताजा ताजा गोल्ड एंड सिल्वर रेट अपडेट लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। एंड नाउ
1: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,200, $4,200 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड की प्राइसेस अपवर्ड ट्रेंड पर हैं। इससे पहले गोल्ड के प्राइसेस और ऊपर जाएं, इस फादर्स डे की सेलिब्रेशंस के लिए 22 कैरेट गोल्ड चेन्स, 22 कैरेट गोल्ड ब्रेसलेट्स और 22 कैरेट गोल्ड कड़ास राज ज्वेल्स की स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन को अवेल करें। आज गोल्ड का प्राइस लॉक करें, 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के हिसाब आज ज्वेलरी घर लेके जाएं और 9 किश्तों में पैसे दें। आइए राज ज्वेल्स के साथ रिस्पॉन्सिबली गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू
0: हाय, देयर यू हैव इट, गोल्ड एंड सिल्वर का लेटेस्ट रेट्स का अपडेट सुना तुमने एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

वेलकम टू द फाइनल आवर ऑफ मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला। और अब बारी आ चुकी है टॉप खबरों की। सबसे पहले, केन्या हैज रिपोर्टेडली अवार्डेड अ $2.9 billion एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट टू अ चाइनीज कंपनी फॉर नैरोबी एयरपोर्ट आफ्टर एन अर्लियर प्रपोजल इन्वॉल्विंग द अडानी ग्रुप डिडन्ट मूव फॉरवर्ड। रिपोर्ट्स से द न्यू डील इज वैल्यूड सिग्निफिकेंटली हायर देन द अर्लियर प्रपोजल। नामिटिपुर इंडिया सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द वर्क डन बाय होम मेकर्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड विद अ मिनिमम नेशनल वैल्यू व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉम्पेंसेशन इन मोटर एक्सीडेंट death claims. The court spoke about how homemakers contribute not just to homes but to society and nation building too. And last but not the least, some football fans in Argentina who couldn't get US visa for the FIFA World Cup got surprise free TVs from a local electronics company to watch from home instead. The TV boxes reportedly even said visa denied and TV approved. And that's it for Mirchi Hour का 3 for this hour with me Priscilla. मुझे सुन रहे हो तो मुझे देख भी लो जाकर Insta और X पर। मेरा handle name है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp पे मेरा number है 9033 Mirchi, that's 9033647244. Right now stay tuned and stay hot.

0: सांबा जिंदगी की बरसात है, आज रात है, टाइम पास है।
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और मिर्ची मॉर्निंग। जरा टाइम आ चुका है
2: मिर्ची राशि जोन।
1: सबसे पहले एरीज यानी मेष राशि, आज समथिंग में शेक अ बिलीफ यू've कैरीड फॉरएवर, अनकंफर्टेबल मे बी, यूजफुल एब्सोल्युटली, अपग्रेड योर माइंडसेट लाइक यू अपडेट योर एप्स। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक कोरल, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, यू वांट पीस, यू वांट बैलेंस, लेकिन टुडेज ड्रामा इजंट योर्स टू फिक्स। सेव योर एनर्जी, नॉट एवरी आर्ग्यूमेंट नीड्स योर टेट टॉक। लकी कलर इज पिस्टाशियो ग्रीन, ओह वन ऑफ माय फेवरेट्स। लकी नंबर इज 22। जेमिनी यानी मिथुन राशि, यू आर इन गो मोड, बट इफ समवन एक्ट्स वियर्ड अराउंड योर शाइन, रिमेंबर डिमिंग योर सेल्फ इज नॉट टीम वर्क। लकी कलर इज डेनिम ब्लू, लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, योर प्रोजेक्ट्स, प्लान और ड्रीम्स नीड फ्रेश आइडियाज, बोरो इंस्पिरेशन नॉट स्ट्रेस। समटाइम्स योर नेक्स्ट बिग मूव स्टार्ट्स विद वन रैंडम कॉन्वर्सेशन। लकी कलर इज पीच ग्लो, वाओ। लकी नंबर इज 31। लियो यानी कि सिंह राशि, नो वेग एम्बिशन टुडे। लियो एनर्जी मीन्स चूजिंग द स्केरी थिंग and doing it anyway. Main character entry maro yaar. Lucky color is molten gold, lucky number is 8. Virgo yani kanya rashi, awkward moment incoming, relax. You survive embarrassment better than you survive slow wi-fi, walk through it confidently. Lucky color is dusty lavender, lucky number is 17. And that's it for Mirchi राशि जोन पार्ट 1। पार्ट 2 लेकर थोड़ी सी देर में आऊंगी, तब तक तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: माय फ्रेंड, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब टाइम आ चुका है राशि जोन पार्ट टू का।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी तुला राशि, न्यू पीपल, अनएक्सपेक्टेड वाइब, मे बी इवन अ टाइनी मूवी मॉन्टाज मोमेंट। डोंट ओवरथिंक वेयर इट गोज, एंजॉय द चैप्टर। लकी कलर इज सनसेट ऑरेंज, लकी नंबर इज 11। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, लाइफ इज टीचिंग यू नॉट टेस्टिंग यू। व्हाट यू लर्न दिस वीक कुड बीट एन एक्सपेंसिव ऑनलाइन कोर्स, स्टे क्यूरियस। लकी कलर इज मिडनाइट प्लम, लकी नंबर इज 29। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, यू केयर डीपली बट डोंट टर्न वन कॉज into your whole personality today. Save energy for your own life too. Lucky color is turquoise, lucky number is 3. Capricorn yani makar rashi, money matters is equal to double check mode, especially if handling shared finances. Today is not a I guessed and hoped day. Lucky color is graphite gray, lucky number is 40. Aquarius yani kumbh rashi, you give honest opinions. Today somebody may return the favor. Don't panic, feedback isn't betrayal. Character development alert. Lucky color is arctic blue, lucky number is 16. And last but not the least, Pisces yani mean rashi, tiny tasks are becoming giant monsters. Handle the little things before they become Sunday evening ki anxiety. Lucky color is C4 mint, lucky number is 27. And that's it for your cosmic update for today. Main hoon Prisila, tumhare saath main sun rahi hoon Mirchi Mornings. Coming up some Mirchidar hotties. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Hum, akhiyan kare ji hazoor.

Avicii. It's Hot.

0: आज फिर वही दिन है जो हमें ये कहने की हिम्मत देता है कि यार मंडे से पक्का
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Virgi. Friday is that day, जिस दिन के आते ही हमें काम से एलर्जी हो जाती है और हम काम चोरी के चलते अपने सारे काम मंडे पर डाल देते हैं और हमारी इसी आदत को भुगतता हुआ मंडे बेचारा गालियों और तानों के बोझ तले जी रहा होता है। लेकिन कुछ भी कहो यार, फ्राइडे है बड़े सुकून की चीज और इसका नाम भी बहुत सोच समझ कर रखा गया है, शुक्रवार। क्योंकि शुक्र है कि शुक्रवार है, वरना काम ना करने का बहाना ना मिलता। चलो जी, नाउ विद दिस वीकेंड का ऐलान करते हैं। और जब वीकेंड का ऐलान है तो एक शरारत तो डेफिनेटली होगी। कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, और इसी के साथ मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए मैं आपसे कहती हूँ कि यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: You know, there is this one film जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, and that is exactly the reason why I want to talk about it. And the film is रानी मुखर्जी की डेब्यू मूवी राजा की आएगी बारात.
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And usually, लोगों की पहली फिल्म हिट होती है, लेकिन बाकी फिर करियर ग्राफ नीचे की तरफ ही जा रहा होता है. बट रानी के लिए इट वॉज दी अदर वे राउंड. उनकी पहली फिल्म राजा की आएगी बारात डेल्ट विद अ सीरियस टॉपिक इन आवर सोसाइटी एंड दैट इज दहेज. लेकिन इस सीरियस फिल्म को पब्लिक ने बड़ा लाइट ले लिया था यार. और ये मूवी ना सिर्फ रानी की डेब्यू थी, बल्कि शादाब खान जो कि अमजद खान के साहबजादे हैं उनकी भी पहली फिल्म थी. लकीली रानी का करियर यहाँ से काफी आगे बढ़ा. बट सैडली इट वॉज इन द सेम फॉर शादाब. उन्होंने इस फिल्म के बाद कुछ थोड़ा बहुत काम किया, बट नथिंग क्वाइट वर्क्ड इन हिज फेवर. एंड फाइनली लुक्स लाइक उन्हें समझ में आ गया कि वो किस काम के लिए बने हैं. He has turned into an author and doing pretty well in the field of writing. But here is something I know about Rani. कि क्यों रानी मुखर्जी की आवाज गुलाम में डब करवाई गई थी. बताऊंगी आपको थोड़ी देर में. अभी के लिए coming up the next track. You stay tuned with me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: फिल्म गुलाम में रानी की आवाज डब की गई थी, पर क्यों? वेल, हर चीज की वजह होती है।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, रानी की पहली फिल्म राजा की आएगी बारात was a big flop। लेकिन इस फिल्म की एग्जिस्टेंस के बारे में सबको पता था और मार्केट में एक बात फैली हुई थी कि ये मूवी फ्लॉप इसीलिए हुई कॉज हीरोइन की आवाज डब नहीं करवाई और ऑडियंस को ये पसंद नहीं आया, which was taken seriously by the makers of गुलाम and those are the Bhats and they decided कि वो रानी की आवाज डब करवाएंगे। दोरानी was not really happy with this decision, लेकिन वो वक्त उनके करियर का शुरुआती दौर था and she of course would not have wanted to lose an opportunity to work opposite आमिर खान। So जो हुआ सो हुआ इन गुलाम, लेकिन उसके बाद ऐसा फिर कभी नहीं हुआ क्योंकि रानी ने ऐसा होने नहीं दिया। Coming up the next track with this, you stay tuned with me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा on मिर्ची, it's hot।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: यार आज के जमाने में जो कोई ठीक ठाक भी दिखता होगा ना, हर उस इंसान का ख्वाब होगा कि यार मुझे ना एक बार एक्टिंग का ब्रेक मिल जाए बस। लेकिन यू नो व्हाट, रानी मुखर्जी का मूवीज में आने का कोई ख्वाब नहीं था।
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड फिर सवाल ये उठता है, वो मूवीज में आई क्यों? एंड रानी मुखर्जी ने अपनी पहली फिल्म राजा की आएगी बारात क्यों साइन की? वेल, हम लोग स्कूल में याद है पढ़ाई से बचने के लिए क्या नहीं करते थे, और रानी ने एक कदम आगे बढ़ के ये काम किया, एंड दैट वाज साइनिंग फॉर द फिल्म राजा की आएगी बारात, ताकि वो पढ़ाई से बच पाए। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बताई कि उन्होंने ये फिल्म साइन क्यों करी। आइए चलिए उन्हीं के मुंह से सुनते हैं।
3: मुझे फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, लेकिन बचपन से कोई ऐसा शौक नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। लेकिन जब मैं 12वीं क्लास में थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं और ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहती हूँ, तो मैं सोच में पड़ गई कि आगे मैं क्या करना चाहूँगी। तो फिर तभी मुझे राजा की आएगी बारात की ऑफ़र आई और मैंने वो पिक्चर कर ली, और उसके बाद फिर ये मतलब शुरुआत होगी मेरी करियर की।
1: यार ये सारी बातें ना मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बहाने होती हैं, क्योंकि जो हमारी किस्मत में लिखा होता है ना, ये बहाने हमें वहाँ पर पहुँचा ही देते हैं। कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक विद दिस व्हिच इज डेडिकेटेड टू रानी मुखर्जी, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: Sunday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज दुल्हन की एंट्री का गाना भी प्री डिसाइडेड होता है और मुझे याद है कि मेरी कजिन की शादी में डेक पर कौन से गाने चलेंगे हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा था।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अगर कोई कजिन मेहंदी और शादी के गानों वाली कस्टम मेड सीडी लेकर आ जाता ना तो शादी वाले गानों का माहौल बन जाता। लेकिन अगर सब ये बात भूल जाते तो फिर तो भाई मेरे मामू के बेटे की चॉइस के ही गाने लगने थे। एंड आई रिमेम्बर देयर वाज दिस वन नाइट जब हम सब छत पर बैठे मेहंदी के दिन के कामों के बारे में बात कर रहे थे कि तभी जोर जोर से वियर्ड हंसी की आवाजें सुनाई देने लगी चारों तरफ से और सबको लगा कि भाई आज तो पता नहीं हम क्या ही विटनेस करने वाले हैं। साउंड लाइक समवन इज पोजेस्ड अंटिल वी रियलाइज्ड कि ये बादशाह के एक गाने का इंट्रो था जो डेक पर बज रहा था। इसीलिए कहते हैं कि शादी से पहले दूल्हे की जांच पड़ताल जितनी जरूरी होती है ना उतना ही जरूरी उस इंसान के टेस्ट को चेक कर लेना होता है जो कि प्लेलिस्ट डिसाइड करेगा। यू ट्यून इन विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: क्रिकेट में हैट्रिक तो हमने सुनी है, लेकिन आज मैं आपको गानों की कॉपी की हैट्रिक बताती हूँ।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and the song
3: Love हुआ, अब ये ना पूछो ये कब हुआ।
1: इस गाने का म्यूजिक वॉज एक्चुअली कॉपीड फ्रॉम दिस सॉन्ग।

यार मैं ये सोच रही थी कि ये म्यूजिक है या फिर वो लेफ्ट ओवर जिसे मम्मा डिफरेंट फैंसी तरीकों से फिर से खाने के लायक बना देती हैं टाइम टू टाइम। हाँ यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डू यू रिमेम्बर द टाइम जब लारा दत्ता वॉज डेटिंग द देन पॉपुलर मॉडल केली डॉर्जी?
2: नब्बे की गप्पे।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And Lara Dutta and Kelly Doji looked so much in love कि सबको लगा था कि ये रिश्ता तो शादी में तब्दील होकर ही रहेगा। लेकिन shockingly the duo broke up और इसके पीछे की वजह बताई जाती है Kelly के then and of course not now best friend Dino Moria। Well, Kelly went on record to tell the world कि किस तरह से Lara and Dino betrayed Kelly's trust and of course trust के साथ साथ यहाँ दिल भी टूटा। And since then till now Kelly and Lara कभी नहीं दिखाई दिए और ना ही Dino और Kelly की दोस्ती दिखाई दी। Truth is indeed stranger than fiction. Stay tuned with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर हाउस पैरो,
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज तुम्हें इस नाम से जानते हैं, लेकिन बचपन में तुम चिढ़ा चिढ़ी के नाम से जाने जाते थे। कमाल की बात तो ये है यार कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस को हमने कितना लाइट लिया है। जब तुम्हें रोज देखने की आदत हो गई थी ना, तो कभी सोचा ही नहीं था कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब एक अरसा गुजर जाएगा लेकिन तुम लोगों के दीदार ही नहीं होंगे, और जहाँ तुम कहीं दिख जाओ तो हम ऐसे चिल्लाएंगे कि जैसे तुम्हें नहीं डायनासोर की एक्सटिंक्ट प्रजाति को देख लिया हो। कैसे अक्सर तुम आंगन में लगी ट्यूबलाइट के पीछे अपना बसेरा बना लिया करते थे, और हम एक्साइटेड होते तुम्हारे बच्चे देखने के लिए। और अगर कभी तुम्हारे घोंसले से कोई बच्चा गिर जाया करता था ना, तो हमें सख्त हिदायत थी कि बच्चों को छूना मत, वरना इनकी माँ इंसानों की स्मेल की वजह से उन्हें छोड़ देगी। क्या ये बस एक बात थी या ये सच था? खैर, इस बात की जड़ तक तो कभी नहीं जा पाई, पर हाँ, तुम्हारा जाना जरूर हो गया। और अब ना तो सुबह शाम तुम्हारी चहचहाने की आवाजें आती हैं, और ना ही उस ट्यूबलाइट के पीछे तुम्हारी जगह भरी जाती है। वो पुरानी ट्यूबलाइट भी बदल कर LED हो गई है, लेकिन तुम इंसानों के इस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की वजह से ही तो परेशान होकर कहीं चले तो नहीं गए? क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार कि हमने खुद के इतने सारे बसेरे बनाने के चक्कर में तुम्हारे एक आध बसेरे भी उजाड़ दिए। लेकिन एक बात बोलूं, आज अगर कभी तुम भूले भटके मेरी बालकनी में आ जाते हो ना, तो ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में मैं स्पेशल हूँ, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा किया, कहीं मुझे अपना माना और चले आए मेरे बसेरे को अपना समझते हुए। सो थैंक यू फॉर दैट। तुम्हारी राह तकदी, तुम्हारी सारा। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ये भी क्या लव स्टोरी थी जो 1942 में हुई और 1994 में बनी।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: कैसेट के साइड ए का तीसरा गाना।
3: कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो।
1: हाय, ये गाना इज मोहब्बत। और सही तो कहा है इस गाने में कि कुछ ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है। कॉज प्यार में दिल की धड़कने, आंखों की हया, गालों का लाल पड़ना और अपने पार्टनर की उंगली लगने पर ही बॉडी में सिहरन सी दौड़ जाना, ये सभी बातें जुबान से बिना कुछ बोले ही बोल दी जाती हैं। तो बोलने की जरूरत कहाँ आती है। प्यार चीज ही ऐसी है जनाब कि इसमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन प्यार के इजहार के लिए तो मैं कहती हूँ कि एक बार आई लव यू बोल ही दिया जाए और दिल का राज खोल ही दिया जाए। तो चलो सुनते हैं ये अगला गाना, लेकिन उसी के साथ मुझे अब है जाना। तो मैं आपसे कहती हूँ कि हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिल ही जाऊंगी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। इसी के साथ ये अगला गाना आ रहा, यू स्टे ट्यून टू मिर्ची इट्स हॉट।

मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद जानू ओनली ऑन मिर्ची।

0: बिल्कुल सही लिखा है आनंद बख्शी साहब ने।
1: दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, किसी को किसी से कभी भी प्यार हो सकता है भाई।
0: जैसे मुझे हो गया, पिछले हफ्ते मैं सुनील दत्त साहब के बारे में इतना पढ़ रही हूँ, उनकी पुरानी फोटोज देख रही हूँ, मुझको प्यार हो गया उनसे। थोड़ी थोड़ी नरगिस जी से जेलसी भी हो गई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। क्या चार्मिंग, ऑनेस्ट, हम्बल, काइंड, हैंडसम बंदा था यार वो। आई एम मैनिफेस्टिंग दिस काइंड ऑफ मैन इन माई लाइफ। तो सुनील दत्त का रियल नेम वॉज बलराज, लेकिन जब उन्होंने फिल्मों में शुरुआत की तब वेटरन बलराज साहनी एक एस्टेब्लिश्ड एक्टर थे, तो उन्होंने अपना नाम सुनील कर लिया। अब सुनील हो या बलराज, व्हाट्स इन अ नेम, कहा था शेक्सपियर ने। हाँ, गुलाब को किसी भी नाम से बुला लो, उसकी खुशबू तो वही रहेगी।
1: मैंने ना सुनील दत्त साहब को स्क्रीन पे पहली बार देखा था जब रंगोलिया चित्रहार में ये गाना आ रहा था।
0: फिल्म छाया, सलिल चौधरी का कॉम्पोजिशन, राजेंद्र कृष्ण ने गाना लिखा है, लता मंगेशकर, तलत महमूद की आवाज। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर

पता नहीं मुझे आज तक ये जोक क्यों अच्छा लगता है कि एक बार एक क्लास में एक टीचर बच्चों को बोलती है कि बच्चों आपको पता है बंदर हमारे पूर्वज थे, तो एक बच्चा बोलता है मैम आपके होंगे हमारे तो जमींदार थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती। ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांत के एक जमींदार थे दीवान रघुनाथ जी, उनकी वाइफ कुलवंती देवी और तीन बच्चे। बड़ा बेटा बलिया जब 5 साल का था इन 1934 रघुनाथ जी नहीं रहे तो परिवार को उनके बड़े भाई यानी कि बलिया के ताऊजी ने संभाला। फिर 1948 में जब देश का पार्टीशन हुआ तो रघुनाथ जी के एक दोस्त याकूब ने पूरे परिवार को यमुनानगर के पास एक गांव में सेफली शिफ्ट होने में मदद की। कुछ साल बाद परिवार का बड़ा बेटा जो अब करीब 21 साल का हो गया था पढ़ाई और नौकरी के लिए बॉम्बे शिफ्ट हुआ, जहाँ उसने जो सोचा भी नहीं था एक बेहतरीन फिल्म करियर उसका वेट कर रहा था। ये बड़ा बेटा बलिया था बलराज, जिसे आज सारी दुनिया सुनील दत्त के नाम से जानती है। लेट दत्त साहब के बारे में बातें हो रही हैं आज पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची

0: Mirchi, it's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

सुनील दत्त साहब की लाइफ स्टोरी सो इंस्पायरिंग। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनील दत्त जब 5 साल के थे उन्होंने अपने फादर को खो दिया, फिर 18 साल की उम्र में देश के पार्टीशन जैसा ट्रॉमा भी एक्सपीरियंस किया। यमुनानगर के पास एक गांव में जो अब हरियाणा में है, उनकी पूरी फैमिली जब शिफ्ट हुई तो प्रैक्टिकली उनके पास कुछ भी नहीं था, वो सब खो चुके थे। अपनी मदर और 2 छोटे सिबलिंग्स, एक छोटा भाई एक छोटी बहन, उनकी तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करते हुए सुनील दत्त 1950-51 में बॉम्बे शिफ्ट हो गए काम करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए। जय हिंद कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई करनी शुरू की और साथ में बस कंडक्टर की जॉब भी। और इसके बाद जो उनको जॉब मिली उससे उनके लिए फिल्मों के द्वार खुल गए। करते हैं उसके बारे में बात थोड़ी देर के बाद, राइट हियर। मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

प्यार, या पंजाबी में बोलते हैं निरा इश्क, मतलब सिर्फ इश्क, प्योर इश्क, पक्का इश्क, निरा इश्क था ये बंदा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और बात हो रही है सुनील दत्त साहब की। अर्ली एज में काफी हार्डशिप्स देखने के बाद ये बंदा अर्ली 50s में बॉम्बे पहुंचा, जय हिंद कॉलेज में आर्ट्स की पढ़ाई करनी शुरू की, बस कंडक्टर की जॉब भी की। और अब आते हैं उनकी दूसरी जॉब पर। वो कॉलेज में प्लेज भी लिखते थे, एक्ट भी करते थे। ऐसे ही किसी प्ले में उनको एक ब्रिटिश एड एजेंसी ने नोटिस किया, जो तब एक प्रोजेक्ट के लिए एक वॉइस, एक पर्सनालिटी ढूंढ रहे थे जो बॉम्बे में फिल्म स्टार्स को इंटरव्यू कर सके। ये प्रोजेक्ट था एक रेडियो शो जिसका नाम था लिप्टन की महफिल, ऑन एशिया का ओल्डेस्ट रेडियो स्टेशन रेडियो सिलोन। तो दत्त साहब की दूसरी जॉब एक आरजे की जॉब थी, जिसे तब अनाउंसर या रेडियो रिपोर्टर भी कहा जाता था। वाओ, मजा सा आ रहा है सोच के। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

द वेरी चार्मिंग सुनील दत्त साहब की बातें हो रही हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। और मिर्ची, बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने फादर को खो दिया, फिर इंडिया के पार्टीशन जैसा ट्रॉमेटिक इवेंट भी एक्सपीरियंस किया। 20-21 साल की उम्र में वो काम करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए बॉम्बे शिफ्ट हो गए। जय हिंद कॉलेज में पढ़ाई करते करते उन्होंने बस कंडक्टर की जॉब करनी भी शुरू की, और इसके बाद इनकी दूसरी जॉब थी एक आरजे की जॉब फॉर अ शो कॉल्ड लिप्टन की महफिल ऑन एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन रेडियो सिलोन। तो बेसिकली उनका काम बॉम्बे में फिल्म स्टार्स को रिकॉर्ड करना होता था, ये रिकॉर्डिंग वो रेडियो स्टेशन पे भेजते थे और फिर उनका शो ऑन एयर होता था, जो एक्चुअली काफी पॉपुलर था। इस शो पर उन्होंने बहुत सारे एक्टर्स को इंटरव्यू किया, इंक्लूडिंग दिलीप कुमार साहब एंड देवानंद। इसी दौरान उनको 2 बीघा जमीन फिल्म का प्रीमियर अटेंड करने को भी मिला, जहां उन्होंने पहली बार देखा अपनी बॉलीवुड क्रश को, नरगिस जी को, जो उस टाइम एक एस्टैब्लिश्ड फिल्म स्टार थी और ये एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट। ये कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल ब्रेक। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

नाम है उनका सुनील दत्त, जिनकी बातें हो रही हैं आज पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची। सो अर्ली 50s में कॉलेज में पढ़ाई करते करते सुनील दत्त साहब ने बस कंडक्टर की जॉब की, फिर उनको रेडियो सलोन में एक आरजे की जॉब, एक शो होस्ट करने की जॉब भी मिल गई, जहां वो बॉम्बे में फिल्म स्टार्स को इंटरव्यू करते थे। इस शो का नाम था लिप्टन की महफिल। ये शो इतना पॉपुलर हुआ, उनका काम इतना पसंद किया गया कि उनको एक और शो होस्ट करने को दिया गया जिसका नाम था फिल्मी खबरें, जहां पे उनको सौरव फिल्मी रिपोर्टर के जैसे काम करना था। तो ऐसे ही वो एक दिन 1953 की शिकस्त मूवी के सेट पे पहुंचे, जिसे रमेश सहगल डायरेक्ट कर रहे थे। और दत्त साहब से बात करते करते सहगल साहब ने उनको कहा कि क्या तुम फिल्मों में काम करने में इंटरेस्टेड हो? तो दत्त साहब ने भी मजाक मजाक में कहा, जी इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन सिर्फ तभी जब मुझे हीरो लिया जाएगा। सहगल साहब ने कहा, ठीक है तुमको हीरो ले लेते हैं, एक तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट कर लेते हैं। स्क्रीन टेस्ट के लिए दिन वगैरह भी तय हो गया, लेकिन दत्त साहब बहुत नर्वस थे। इसके बाद क्या हुआ करते हैं बात थोड़ी देर के बाद, राइट है। मैं हूँ चारू आपके साथ और

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

द वेरी चार्मिंग सुनील दत्त साहब और उनकी लाइफ स्टोरी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो अर्ली 50s में दत्त साहब पढ़ाई कर रहे थे और जॉब भी कर रहे थे, रेडियो सलोन रेडियो स्टेशन में एक आरजे की जॉब। इसी जॉब में जब वो 1953 में स्टिल इन कॉलेज ही वाज, शिकस्त फिल्म के सेट पे गए तो फिल्म के डायरेक्टर रमेश सहगल ने उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया। और जिस दिन दत्त साहब को स्क्रीन टेस्ट के लिए जाना था वो बहुत नर्वस थे। टेस्ट के लिए पहुंचे तो उनको जो कपड़े पहनने को दिए गए वो दिलीप कुमार साहब के कपड़े थे, जो दत्त साहब को काफी छोटे पड़ गए। उनको अपना अपीयरेंस बहुत फनी लग रहा था और इससे वो और नर्वस हो गए। किसी तरह से डायलॉग वायलॉग बोलकर वो वहाँ से भाग गए और पलट के सहगल साहब से बात ही नहीं की। कुछ टाइम बाद सहगल साहब का असिस्टेंट उनको उनके कॉलेज में ढूंढता हुआ आया और उसने कहा कि भाई चलो, तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था। और जब सहगल साहब ने दत्त साहब को उनकी पहली फिल्म ऑफर की तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैंने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि मैं पढ़ाई पहले पूरी करूंगा। ये सुन के सहगल साहब ने उनको गले से लगा लिया और बोला कि भाई तुम्हारे जैसे लोगों की ही जरूरत है, तुम पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद फिल्म शुरू करेंगे। ये थी 1955 की फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म। यहाँ से गाड़ी आगे कहाँ बढ़ी करते हैं बात थोड़ी देर के बाद। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची. मिर्ची, इट्स हॉट. पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची.

सुनील दत्त साहब की फिल्मी जर्नी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस जर्नी की शुरुआत हुई थी 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म नाम की मूवी से। इस रेलवे प्लेटफॉर्म से जो गाड़ी निकली तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन पे पहुंची, विच वॉज मदर इंडिया इन 1957, जिसने सुनील दत्त को एज दिस प्रोमिसिंग एक्टर एस्टैब्लिश कर दिया। उनकी परफॉर्मेंस एज दिस बागी बच्चा बिरजू तो कमेंडेबल थी ही, उस टाइम के हिसाब से इस तरह का रोल करना जिसमें कुछ नेगेटिव शेड्स भी हो, ये बहुत बोल्ड था। इस इंटरनेशनली अक्लेम्ड फिल्म ने उनकी प्रोफेशनल लाइफ को तो बूस्ट दिया ही, उनकी पर्सनल लाइफ भी सेट कर दी। इसी फिल्म के सेट पे उनका और नरगिस जी का इश्क हुआ था ना, जिसके बारे में हम बड़े प्यार से आराम से अगले आर में बात करेंगे। वैसे जैसे ही दत्त साहब की लाइफ में लेडी लक आया, उनकी तो निकल पड़ी। 1960s सुनील दत्त साहब का गोल्डन पीरियड था, जहां उन्हें अलग अलग तरह की फिल्में, रोल्स मिले, अवार्ड्स मिले, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने और उस टाइम के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर बने। ही वॉज अ स्टार। इस टाइम दत्त साहब का चार्म पीक पर पहुंचा विद हिज अडोरेबल परफॉर्मेंस एज भोला इन पड़ोसन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं

0: Mirchi. It's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

आज पुरानी जीन्स पर हम मिल रहे हैं दत्त साहब यानी कि सुनील दत्त की लाइफ एंड फिल्मी जर्नी से। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची। देखिए वैसे तो दत्त साहब को बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला, लेकिन अलग से अवार्ड्स की बात करें तो उनको पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला 1964 में उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म मुझे जीने दो में उनकी परफॉर्मेंस के लिए, जहां पे उन्होंने एक डाकू का रोल निभाया था जिसे सच्चा प्यार सुधार देता है। फिर 1964 में उन्होंने एक बहुत ही यूनिक फिल्म बनाई थी यादें। ये इंडिया की पहली फिल्म थी जिसमें एक सिंग

की थी, डायरेक्ट भी की थी। इस फिल्म में जो बाकी के किरदार दिखाए गए थे ना, वो सिर्फ आवाजों के द्वारा दिखाए गए थे। इस फिल्म का नाम सिर्फ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही नहीं दर्ज किया गया, बल्कि इसे उस साल बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। 1968 में सुनील दत्त साहब को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1995 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 2005 में मरण उपरांत दादा साहब फाल्के अकेडमी द्वारा फाल्के रत्न अवार्ड भी मिला। 1965 में एक फैमिली ड्रामा मूवी खानदान में एक डिफरेंटली एबल्ड बेटे का किरदार निभाने के लिए भी उनको बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसी फिल्म का गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 मिर्ची, it's hot.
0: पुरानी जीन्स विद चारों, only on मिर्ची.

दत्त साहब और नरगिस जी की लव स्टोरी। ओए होए, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इनकी प्रेम कहानी किसी भी फिल्मी प्रेम कहानी से बहुत ज्यादा फिल्मी है। आई एम श्योर आपने सुनी होगी कि मदर इंडिया फिल्म के सेट पे फायर एक्सीडेंट हुआ, नरगिस जी आग में फंस गई और हमारे ये हीरो आग में कूद गए उनको बचाने के लिए। नरगिस जी को थोड़ी सी इंजरीज आई लेकिन सुनील दत्त को काफी इंजरीज आई। तब 2 हफ्ते तक नरगिस जी ने उनके जख्मों पे मरहम पट्टी की, उनका ख्याल रखा और बस ऐसा करते करते लव, इश्क, प्यार, मोहब्बत हो गया। फिर शादी भी हो गई, 3 बच्चे भी हो गए। लेकिन आपको पता है ये दोनों मदर इंडिया के सेट पे पहली बार नहीं मिले थे। एक्चुअली उसे मुलाकात बोलेंगे या नहीं, अर्ली 50s में जब दत्त साहब कॉलेज में थे और रेडियो सलोन में एज रेडियो फिल्म रिपोर्टर जॉब भी कर रहे थे, तब वो अपने बॉस के साथ 2 बीघा जमीन फिल्म के प्रीमियर पर गए थे, जहां पर उन्होंने अपनी बॉलीवुड क्रश नरगिस जी को देखा था। नरगिस जी ने उनको देखा था कि नहीं पता नहीं, लेकिन दत्त साहब तो मेस्मराइज्ड हो गए थे। शायद कस्मे खाने, वादे साथ निभाने, घर बसाने के ख्वाब भी देखने लगे थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारु ओनली ऑन मिर्ची रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारु ओनली ऑन

सुनील दत्त साहब और नरगिस जी की लव स्टोरी बहुत अमेजिंग और इंट्रीगिंग भी है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो नरगिस जी एक सॉर्ट ऑफ डिसफंक्शनल फैमिली से बिलोंग करती थी। बचपन से ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जबकि दत्त साहब एक रेगुलर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, फिल्मों से कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट दत्त साहब ने जब नरगिस जी को 2 बीघा जमीन फिल्म के प्रीमियर पर पहली बार देखा था, तब वो एक एस्टेब्लिश्ड फिल्म स्टार थी और ये एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट जो एक रेडियो स्टेशन के लिए काम करते थे। नरगिस जी तब राज कपूर जी के साथ रिलेशनशिप में थी, जिसका उनको कोई सुखद अंत नजर नहीं आ रहा था। वो शादी करना चाहती थी, सेटल होना चाहती थी। 1956 में उन्होंने ये रिश्ता खत्म कर लिया। इनफैक्ट बहुत टाइम के बाद आरके फिल्म्स के बाहर कोई फिल्म यानी कि मदर इंडिया साइन की। ये तो उन्हें करना ही था क्योंकि उन्हें दत्त साहब से जो मिलना था। नरगिस जी ने ये तक कहा था कि अगर दत्त साहब उनकी लाइफ में नहीं आते तो शायद वो अपनी लाइफ खत्म कर लेती। नरगिस जी के चले जाने के बाद एक इंटरव्यू में दत्त साहब ने कहा था कि कई बार हमें लगता है कि वो हमारा अपना जब चला गया उसके बिना हम कैसे जिएंगे, लेकिन जी लेते हैं क्योंकि उसकी यादें साथ होती हैं और उसके साथ जो सपने देखे होते हैं वो पूरे करने होते हैं। आपको पता है ये दोनों एक दूसरे को डार्लिंग जी कहकर बुलाते थे। हाउ अडोरेबल। हैट्स ऑफ टू दिस लव स्टोरी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

आहा, उस्ताद गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। संजू फिल्म याद है ना, जिसमें दत्त साहब संजू को तीन उस्ताद गाने बताते हैं। एक तो दत्त साहब की ही फिल्म थी हमराज, जिसका गाना था न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। दूसरा हाथी मेरे साथी का, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। और एक ये वाला, कुछ तो लोग कहेंगे। सुनील दत्त साहब की बात आज हम कर रहे थे और उनकी लाइफ स्टोरी अगर आप पढ़ें, जानें, समझें तो कितना कुछ है सीखने को। लाइफ में हमारे साथ जब कुछ गलत होता है, अनफेयर होता है, हम शिकायत वाले मोड में चले जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बिटर हो जाते हैं या नफरत करते हैं या इनसिक्योर हो जाते हैं। दत्त साहब ने भी अपनी लाइफ में बचपन से ही काफी कुछ देखा, लेकिन उससे उनके मन में कड़वाहट या नफरत नहीं आई, बस मोहब्बत और काइंडनेस आई। He was an honest, humble, handsome man who just loved. Unki life, unki life ki learnings are to be celebrated. Hats off to the very charming Dutt Sahab. Purani Jeans par main hoon Charu aapke saath. Instagram pe mil jaungi @rj.charu. rj.charu. Sunte rahiye Mirchi.

जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे। आ

दिन बीवी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती,

0: के भागा भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा।
1: बोला देवी माफ कीजिए मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई, पीना छूट गया

डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार। जहां चारिया

0: दोस्त अपने कंफर्ट के हिसाब से अगर आप गलत चीजों को हाईलाइट करते हैं तो आप इक्वली गलत हैं।
1: श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्चे बेट्यून हूँ आप, और पिछले कुछ दिनों से 370 रुपए वाली बिरयानी और उस बंदे के साथ साथ वो जो हमारे कमेडियन सर हैं उनको लेके जो ह्यू एंड क्राई क्रिएटेड है ऑन सोशल मीडिया इज मेकिंग मी थिंक लाइक दिस। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग ओपिनियंस दे रहे हैं अपने वीडियोज के फॉर्म में, बट इनमें से ही बहुत सारे लोगों को मैंने पर्सनली देखा है अपने पर्सनल ग्रुप में इसी तरीके के ऑब्जेक्टिफिकेशन रिमार्क्स करते हुए या वैसे रिमार्क्स पे इंजॉय करते हुए, हंसी ठिठोली करते हुए। तो अगर आप उस जगह पे अपने दोस्त को चुप नहीं करा पा रहे हैं, उसको कॉल आउट नहीं कर पा रहे हैं, देन ब्रो सोशल मीडिया पे इतनी डींगे हांकने से क्या ही हो जाएगा। कभी मौका मिले तो अपनी किसी फीमेल फ्रेंड से पूछिएगा कि वो ऑन अ डेली बेसिस ऐसी कौन कौन सी हरकतें झेलती है। वैसे मेरे एक रिव्यू पे रिसेंटली एक बंदे ने इसी तरीके से गाली गलौज की शुरुआत कर दी, मैंने उसको अपनी स्टोरी पे हाईलाइट भी किया, एंड अनफॉर्चुनेटली दो लोगों के अलावा किसी ने भी उस बंदे को कॉल आउट नहीं किया इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड दैट इज व्हाई माई फ्रेंड आई एम सेइंग कि अपने कम्फर्ट के हिसाब से अगर आप किसी गलत चीज को हाईलाइट कर रहे हैं देन यू आर इक्वली गलत इन दैट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: झुमका
1: Radio Mirchi, Radio Mirchi, it's hot.
2: Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

Mirchi, it's hot.